0: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
1: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
2: Higher Ed, check the audio.
0: Let's do it. Let's start.
3: Breaking story, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
4: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
5: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
4: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
0: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आग प्योर मसाला।
9: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कूलेस्ट स्पा एट होम।
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स, ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स।
11: Thank you.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है
11: कुछ इससे भी अनोखा।
10: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
12: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
13: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
14: High rate, check the audio.
12: Let's do it.
15: Breaking story, we're jumping straight into it.
12: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
16: 21 days in Kashmir.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: कोई समाचार पत्र ये लिखता था कि इंडिया इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ ब्रिक्स, कोई कहता था इंडिया हैज बिकम इनसिग्निफिकेंट इन द ब्रिक्स। भारत विश्व के साथ एक सकारात्मक प्रभावी विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और उस अतीत के काले अध्याय जिसमें ब्रिक्स में भारत को इनसिग्निफिकेंट, वीकेस्ट और अवांछित सदस्य के रूप में माना जाता था, उससे बहुत आगे की यात्रा कर उसे विस्मृत करके एक नए स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा।
1: On that note, we're slipping into a short break, but our rolling coverage on the BRICS summit continues. Shiv Arur, Vishnu Shom and Aditya Rajkol, along with all our reporters on the ground, will be joining me live shortly. Stay tuned to NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: New rules of engagement. Ambitions crossing borders.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing gears faster, bolder, more restless. It doesn't stop, neither do we. NDTV, when it really matters.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani are pure vermicelli. स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
7: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
8: दिस इज़न्ट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज़ अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
9: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज़ अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
8: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट। Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani. प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
6: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
7: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस। व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी। योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मेबी नॉट। Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आके और मसाला।
4: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
6: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
7: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
8: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
7: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: एक्सलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, इनोवेटर्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष हम ब्रिक्स के 20 ईयर्स मना रहे हैं। 2006 में जब इस समूह की शुरुआत हुई थी तो इसमें केवल 4 देश थे। आज ब्रिक्स और ब्रिक्स पार्टनर्स मिलाकर 21 कंट्रीज का हमारा परिवार है। आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं। ग्रासरूट से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तक हमारे देशों में इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही है। ब्रिक्स की बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है। भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। फ्रेंड्स, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। पिछले 12 वर्षों में भारत ने इस मंत्र को अपनी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज का आधार बनाया है। रेजिलियंस की बात करें तो भारत ने एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी तक सप्लाई चेन्स को अधिक डाइवर्सिफाइड और रिलायबल बनाया है। इसी रेजिलियंस का परिणाम है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत आज ग्रोथ और स्टेबिलिटी का भरोसा दे रहा है। हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड, आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। 2 लाख के अधिक स्टार्टअप्स और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है। इसकी एक झलक आपको ब्रिक्स भारत इनोवेट्स एक्सपो में दिखाई देगी। हमारे स्टार्टअप्स, एआई, एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरीज पर काम कर रहे हैं और डिफेंस और स्पेस में भी नए फ्रंटियर्स पार कर रहे हैं। अब हमें ब्रिक्स के माध्यम से भी इन वर्ल्ड क्लास इनोवेशंस को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है। फ्रेंड्स, भारत इनोवेशन स्टोरी की एक और विशेषता है इनोवेशन एट पॉपुलेशन स्केल। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं और इस डिजिटल लेयर पर नए सॉल्यूशंस बनाने के लिए हमने इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को एक ओपन इकोसिस्टम दिया है। हमें गर्व है कि भारत के इस वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम को कई देश अपना रहे हैं। ब्रिक्स देशों के इनोवेटर्स भी इस एक्सपीरियंस के आधार पर अपने देशों के लिए नए सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना। इसलिए हमारी अध्यक्षता में हमने एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्किल्स और स्मार्ट ग्रिड जैसे क्षेत्रों में नए कोऑपरेशन नेटवर्क का गठन किया है। स्टार्टअप्स और एसएमईज को मार्केट और फाइनेंस से जोड़ने के लिए हमने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क, ब्रिक्स एमएसएमई पोर्टल और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड जैसी पहले की हैं। इन सभी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क्स का लाभ आप सभी उठा सकते हैं और हमारे देशों के बीच इन्वेस्टमेंट और टैलेंट का आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है। ब्रिक्स विमेन्स विंग्स बिजनेस अलायंस भी हमारे विजन का अहम हिस्सा है। हम चाहते हैं कि विमेन एंटरप्रेनर्स हमारी ग्रोथ स्टोरी को लीड करें। हमें बहुत खुशी है कि भारत में आयोजित इस अलायंस की मीटिंग में करीब 200 विमेन बिजनेस लीडर्स ने भाग लिया है। फ्रेंड्स, आज जब ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल से मेरा आग्रह रहेगा, क्या आप ब्रिक्स देशों के बीच टॉप टेन ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं? क्या हम हर वर्ष 100 ब्रिक्स स्टार्टअप्स को दूसरे ब्रिक्स मार्केट्स में स्केल करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम अपने बिजनेसेस के बीच 1000 नई पार्टनरशिप विकसित कर सकते हैं। इन तीनों मापदंडों पर हमें हर वर्ष अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहिए। आइए ब्रिक्स के एम्बिशन को एक्शन में और कलेक्टिव स्ट्रेंथ को ग्लोबल सॉल्यूशंस में बदले। ब्रिक्स आगे बढ़े और दुनिया को भी आगे बढ़ाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दैट वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस लीडर्स सेशन। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस टुडे। May I request all our distinguished guests to kindly remain seated until the esteemed members of the leadership on the dais have exited the hall.
2: That was the leaders' session.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: 7 nations, half the world population.
1: A new world order with India at the center.
2: A whopping one-third of global GDP. A new power equation.
3: BRICS 2026, India's global moment.
0: As the world comes to NDTV, when it really matters.
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
5: देखिए नेविगेट मी टू द नेशनल आर्चरी क्लब व्हाट टाइम इज
6: द मेडल सेरेमनी बिगिंस एट 6:30 PM
7: लाइव जेन AI

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: 7 nations, half the world population.
1: A new world order with India at the center.
2: A whopping one-third of global GDP.
3: Is acting as an economic bridge between countries that are facing turbulence due to global and economic pressures, from trade barriers to BRICS milestones to safety of Indian seafarers. Listening to what the Prime Minister said today at the BRICS Business Forum.
4: आज जब BRICS अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, BRICS Business Council से मेरा आग्रह रहेगा, क्या आप BRICS देशों के बीच टॉप टेन ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं? क्या हम हर वर्ष 100 BRICS स्टार्टअप्स को दूसरे BRICS मार्केट्स में स्केल करने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम अपने बिजनेसेस के बीच 1000 नई पार्टनरशिप विकसित कर सकते हैं? इन तीनों मापदंडों पर हमें हर वर्ष अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना चाहिए। आइए BRICS के एम्बिशन को एक्शन में और कलेक्टिव स्ट्रेंथ को ग्लोबल सॉल्यूशंस में बदले। BRICS आगे बढ़े और दुनिया को भी आगे बढ़ाए। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। 2 लाख के अधिक स्टार्टअप्स और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है। इसकी एक झलक आपको BRICS भारत इनोवेट एक्सपो में दिखाई देगी। हमारे स्टार्टअप्स AI, एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
3: We have some exclusive from India-Iran bilateral meeting that just got over. As per sources, India raised the issue of regional stability in the midst of ongoing West Asia crisis. What we understand is that India has also raised concerns around safety and security of seafarers. And sources have told NDTV that remains India's top priority. India is also likely to push for dialogue and diplomatic efforts towards finding a solution to the West Asia crisis. Remember, these are the expected takeaways from the India-Iran bilateral meeting that just got over. President Masoud Pezeshkian and Prime Minister Modi held a bilateral meeting just a short while ago. It's over now, and what we understand is that India has also pushed for dialogue and diplomatic efforts towards finding a solution to the West Asia crisis. Remember, the war amongst Iran and US and Israel has had ramifications for India as well. India is also seeking to

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service.

0: मधुर एलीट
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्द्र मसाला।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
6: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए होस्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल होस्ट, दैट यू शुड इंश्योर 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी फॉर दैट.
1: बट लेट्स शिफ्ट फोकस नाउ टू अ स्टेट दैट्स मेकिंग नॉइज क्वाइट डिसप्रोपोर्शनेट टू इट्स साइज. आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब, एंड देयर सीम्स टू बी अ फ्लरी ऑफ एक्टिविटी इन द स्टेट इन द रीसेंट पास्ट, एंड आई वंडर इफ इट्स बिकॉज ऑफ अ लीडरशिप रीशफल दैट हैज टेकन प्लेस. दिस वीक द कांग्रेस अपॉइंटेड इट्स न्यू जनरल सेक्रेटरीज इन चार्ज ऑफ सेवरल स्टेट्स. रणदीप सिंह सुरजेवाला गॉट एडिशनल चार्ज ऑफ गुजरात, ही इज ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ कर्नाटका. भूपेश बघेल, ही वॉज शिफ्टेड फ्रॉम पंजाब टू असम. And Sachin Pilot got charge of this high-value state. Since then, there seems to be a new energy in the party unit in Punjab, and even the warring factions, no pun intended, seem oddly friendly with each other. So let me start by asking you, Bhupen Chaubey, because last week you had said the cat among the pigeons by saying that Amrinder Singh Raja Waring is going to go. Waring is still there, but Mr. Bagheel has gone. Now what's going to happen?
2: Well, I got 50% right
1: of
2: that story. But we don't know. We don't know what will happen on that front yet. I mean, I'm not saying that worrying will continue till the elections. Sachin Pilot has now made a statement that there is not going to be any chief ministerial face and that Rahul Gandhi is going to be the person. I think one of the reasons why, the question to raise perhaps is, why was Bhupesh Bagheel removed? Yeah. And why has Sachin Pilot been brought back, been brought into Punjab? I think Mr. Bagheel, in the eyes of the Delhi Congress leadership, was becoming a person who was getting too close to a certain faction of the Congress party in the state of Punjab, and therefore was unable to, you know, to manage all the friction and carry forward all the leaders. Now, this is not to say that just because Sachin Pilot has now been made the General Secretary in charge of the state of Punjab, all the warring factions will suddenly, you know, let go of their guard. Sukhjinder Randhawa has worked in the state of Rajasthan as a key observer along with Sachin Pilot.
1: Pratap Singh famously called that meeting for which no one went, neither Mr. Gehlot went nor Mr. Pilot went.
2: Yeah, so that's one.
1: And he was state in charge. Yeah? Yes.
2: Pratap Singh Bajwa, the present leader of opposition, who went with a bouquet to give to Sachin Pilot, has been tweeting away that Sachin is my younger brother. Mm-hmm. Now, if Sachin is a younger brother to everybody, then I don't know how this younger brother is going to really be able to crack the whip. Mm. The problem before the Congress in Punjab still remains what it was pre-Sachin, which is, are all these various leaders whose names I'm taking, are all these leaders going to work together as one cohesive unit under Sachin Pilot? Hmm. Or is the story still the
1: same? Bataiye Sameer ji, andar ki khabar kya hai? Kyunki badi ajeeb si cheez hui. One day after Sachin Pilot was made the General Secretary in charge, so Jinder Singh Randhawa, जो सबसे ज्यादा कह रहे थे कि भाई अमरिंदर सिंह राजा वरिंग को हटाओ, उन्होंने एक रिपोर्टर को बोला, हमें तो कभी बोला ही नहीं था, हमने कहाँ बोला था, मैंने कभी बोला कि पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज कीजिए.
3: देखिए, सचिन पायलट मुझे लगता है बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे. वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनने के सोच रहे थे और 28 में तो राजस्थान में चुनाव है, तो राजस्थान का एक बड़ा वर्ग जो खुश है कि सचिन पायलट को पंजाब भेज दिया गया है, तो कम से कम वो अब प्रदेश अध्यक्ष की अभी फिलहाल दौड़ में नहीं है. और डोडासरा जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुश हो रहे होंगे कि थोड़ा मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा. अब सचिन पायलट इसके पहले छत्तीसगढ़ के इंचार्ज थे, छत्तीसगढ़ का चुनाव परिणाम क्या आया, अब उनको वहाँ भेजा गया. और वहाँ रंधावा जो हैं पंजाब के, वो राजस्थान के प्रभारी थे, तो उनका जो व्यवहार राजस्थान के अंदर रहा था सचिन पायलट के साथ, अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से वो काम कर रहे थे. अब सचिन पायलट उन्हीं के राज्य में प्रभारी बनकर गए हैं जहाँ से रंधावा आते हैं, तो अब सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे रंधावा चन्नी
1: पर उनके रिश्ते कैसे हैं, ये सारे जो डिफरेंट कैंप्स हैं उनके साथ.
3: नहीं, ठीक है, देखिए सचिन पायलट
1: बहुत सुलह करा पाएंगे, वो नहीं करा पाएंगे,
3: नहीं करा लेंगे सचिन पायलट. और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को भेजने के पहले चन्नी से बात हुई थी, चन्नी से बात हुई, उसके बाद सचिन पायलट को भेजा गया. और चन्नी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है सचिन पायलट के लिए कि वेलकम करने के लिए, बता रहा है कि चन्नी उससे बहुत खुश है आने से. भूपेश बघेल, वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि भूपेश बघेल पंजाब के अंदर कंटिन्यू करें, और मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान को लगा हुआ कि अगर भूपेश बघेल रहेंगे तो चुनाव बहुत बुरी तरीके से मतलब डिस्टर्ब होगा,
1: क्योंकि यहाँ पे सच में एक ऑप्शन है कांग्रेस का जो उनके जीतने की चांसेस हैं. लड़ाई खत्म हो गई है या इन कांग्रेस नेवर से नेवर,
4: लड़ाई
1: यू नेवर नो व्हेन द फैक्शनलिज्म इज गोना कम बैक.
4: अभी होती नहीं है नेताओं में, ये कह सकते हैं कि फिलहाल जैसे सीज फायर वाली स्थिति बन गई है सचिन के जाने से. उसका रीजन है कि सचिन की जो छवि, जो भी भूपेन ने भी कहा कि भूपेश बघेल अलाइन हो गए थे एक सेक्शन के साथ, और यही प्रॉब्लम हो गई थी पिछले चुनाव में जब हरीश रावत थे, उनके साथ भी यही हो गया था. ये दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर जो है ये अलाइन हो गए थे. सचिन के साथ क्या है कि सचिन एक तो राजस्थान से हैं, मतलब यूपी से हैं ओरिजिनली, बट राजस्थान में काम कर रहे हैं, तो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर्स मिलते हैं. वो राजस्थान की तासीर को बेहतर समझते हैं, सॉरी पंजाब की तासीर को बेहतर समझते हैं भूपेश बघेल की तुलना में। फिर चूंकि राजेश पायलट के बेटे हैं, उनकी एक लेगेसी है, तो पंजाब के कई सारे लीडर्स एक ज़माने में राजेश पायलट से ओबलाइज भी रहे हैं। राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो रिश्ता भी सचिन का है। तो सचिन के साथ जो एक पर्सनल टच है लीडर्स का, वो भूपेश बघेल के साथ नहीं था। तो ये सब चीज़ों को देख के, और यंग है, न्यूट्रल है, और सचिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को करीब लाने में ज़्यादा कामयाब होंगे, बेहतर। अब
1: और एक एक कोइंसिडेंस भी है दैट अब राजस्थान का एक फेस ऑफ होगा पंजाब के अंदर, क्योंकि सतीश पुनिया है बीजेपी के प्रभारी और सचिन पायलट राजस्थान से हैं,
4: जाट और एक गुजर।
1: जाट वर्सेस गुजर होने वाला है।
3: 2022 में भी दोनों राजस्थान से प्रभारी थे। हरीश चौधरी पहले ये थे, अपने जिसका आपने नाम लिया अभी, हरीश रावत थे, उसके बाद उनके हरीश चौधरी बने, राजस्थान से थे, और गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से 2022 में थे। तो 2022 में भी दोनों राजस्थान के जो नेता थे वो पंजाब के प्रभारी रहे थे।
1: इंटरेस्टिंग, बिफोर वी pop the champagne and think that all is going to be well within the Congress, let me just quickly tell our viewers that just when they were giving conciliatory statements, you had a delegation of the Congress go and meet the governor about the suicide of a man, of a Dalit man, Gulzar. And in that delegation that met the governor, there was only Charanjit Singh Channi, Sukhjinder Singh Randhawa, and none from the Warring camp were over there. That meeting happened yesterday. So if the Congress is experiencing this burst of energy of late in Punjab, one party that has been at the receiving end, and an unfortunate receiving end, is the ruling Aam Aadmi Party. Now, what happened? It all started with the suicide by a Dalit laborer in the Sangrur district of Punjab. This man, Gulzar, had questioned Punjab's finance minister Harpal Cheema about the drug problem in the state during a public program. He basically went there with a black flag. Gulzar then said that his son is a victim of chitta, nasha, the drug problem that exists. And in this public meeting in front of Harpal Cheema, Gulzar said that it's still being sold openly and my son is an addict. Now, allegedly after this, he faced political pressure. He was picked up by the sarpanch. He was asked to issue an apology. And he says that he was tortured to an extent that he consumed poison. He had these sulfas tablets. A few days later, he died, but not before he left this dying declaration.
5: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ?
6: ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਜੀ।
5: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
6: ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਪਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ।
5: ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਸਨੇ।
6: ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ।
1: Now, to make matters worse, Gulzar's family says that their father's body was forcibly cremated under police protection, and this has given fresh impetus to the attack on the Bhagwant Mann government by both the Congress and the BJP.
7: ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਦਬਕੇ ਮਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FM 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
1: Akhilesh, this has all the ingredients that can prove potent against the Aam Aadmi Party.
3: Absolutely.
1: It's a Dalit laborer, it's in the chief minister's own constituency, drugs are involved. What do you see will happen? Will Harpal Cheema have to go?
0: Well, it's a serious indictment of the Aam Aadmi Party government, because remember in 2022 when they came to power, that time the famous movie Urda Punjab, and then this drugs problem, and Aam Aadmi Party's promises that, you know, they will completely remove it from the roots. The drug problem will be completely uprooted from Punjab. That was the election promise made by the Aam Aadmi Party. But after 5 years, what has happened? A person commits suicide because his son is taking drugs, and that too in the constituency of the chief minister.
1: And he takes the name of the minister.
0: Finance minister, and take the name of that. And also, because what has happened is that he's Dalit also.
1: Yeah.
0: So all the factors, you know, they are going against Aam Aadmi Party. And remember now, not only the Congress Party, but also the BJP.
1: Hmm.
0: BJP is going to take out a big yatra against the drugs. BJP President Nitin Namin will launch this yatra. Home Minister Amit Shah will also be part of that yatra. So BJP is going to make it a big issue. And that will actually hurt the Aam Aadmi Party in the upcoming assembly elections.
1: But who do you see gaining more from this, Bhupen? Is it going to be the BJP or the Congress? Because

0: Congress is front footing it, saying that this is a Dalit laborer. You know, you had delegations of the Congress going and meeting the governor. BJP yesterday tried to go to this village, but they said they were stopped. Who will gain more from
1: that's this? Why I think Sachin Pilot's appointment at this stage becomes that much critical. Because this is an opportunity. This is a godsend opportunity, I would say, no pun intended, to the Congress party. The political semantics of Gulzar Singh's death are such that it can shift hugely the very significant and critical Dalit vote base in the state of Punjab. We all have seen how Rahul Gandhi consistently in different parts of the country has been trying to position himself as the harbinger and the savior of Dalits in the state. The Aam Aadmi Party, I'm in agreement with Akhilesh, is clearly on the back foot in the state of Punjab. They have all kinds of problems. Arvind Kejriwal, I think a few weeks back, was openly celebrating the launch of what they called Pila Punjab. You know, which was a bulldozer, which was
0: because they carried out the entire Yudh Nasha Virudh,
1: Yudh
0: and
1: Nasha
0: so
1: Virudh.
0: Many of these buildings were brought down
1: by
0: supposed drug peddlers.
1: It was a critical part of their election campaign at the time of the 2022 Punjab Assembly elections. Clearly, they have not succeeded in dealing with
0: it. So then, why aren't they dismissing Harpal Chima? Why are they digging in their heels?
1: Well, if anything, they have
0: here a man has taken his name in his dying declaration.
1: They have brought Mr. Chima in their highest decision-making body,
0: in the PSC,
1: which is also a messaging which is going. Now, you know, I mean, you could well argue that maybe Mr. Kejriwal is taking a leaf from the Prime Minister's book, that it's not that the BJP also, you know, gets rid of a leader just because some controversy has happened. Mr. Kejriwal at this stage has a very clear and I would say a reduced playbook to play with. Harpal Chima in that sense plays a very, very critical role. He's a state finance minister. He's, well, clearly blessed with the ability to bring in resources within the party as well. To let go of him or to remove him would have ended up, you know, exposing the Aam Aadmi Party a little more at this stage. And I don't think Kejriwal wants to take that chance at this stage.
0: In fact, if anything, they have gone on the offensive. Because now, Sameer Ji, yahan par parivar ne bola hai ki, aur isko Congress hathras se compare kar rahi hai. Dekhiye, and the optics are the same. Because wahan pe bhi ek Dalit bachchi thi, yahan pe ek Dalit laborer hai. Aapne le liya aur wo tasveerein dikhaiye. You show those pictures where you've got an entire police cordon around where that pyre is being lit. So, इससे मतलब स्ट्रैटेजी क्या है आम आदमी पार्टी की इसमें?
2: नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट है चुनाव के पहले इस तरीके से घटना और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगना. देखिए 2022 के चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था ना कि भाई कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल इतने समय शासन किया पंजाब के अंदर और ड्रग्स की समस्या इनके इसमें बड़ी. मजीठिया पर जिस तरीके से आरोप लगाया था कि भाई ड्रग्स की डील करते हैं लेकर अकाली दल के नेता के ऊपर, और केजरीवाल ने कहा था हम आएंगे तो हम ड्रग्स फ्री पंजाब को बनाने वाले हैं. 5 साल बाद आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा. आपको इतना प्रचंड मैंडेट मिला, 92 सीट्स आप उसमें जीत जाते हो, उसके बाद 5 साल बाद भी आप ये बताने की स्थिति में नहीं हो कि ड्रग्स को लेकर आपने क्या काम किया. और जब अब ये कहा जाता है कि मतलब जो राघव चड्ढा ने भी कहा कि राशन की दुकानों पर ड्रग्स की बातें हो रही है, स्कूल कॉलेजेस के प्रमाइसिस के आसपास ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा इस मामले को लेकर आपने किया गया? आपको जनता के बीच चुनाव में इस बात को लेकर जाना होगा. और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, कहेगी कि भाई पंजाब की जनता से कहेगी आपने कांग्रेस को इतने लंबे समय देखा, आपने आम आदमी पार्टी को पूरा इतना प्रचंड बहुमत देखा, एक बार अब हमको पूर्ण बहुमत दीजिए, हम इस मामले को देखना चाहते हैं.
0: दिस इज एन इशू दैट आम आदमी पार्टी इज वेरी टची अबाउट. अ फ्यू डेज अगो हरभजन सिंह हैड ट्वीटेड दैट वीडियो ऑफ अ मैन who was out of his senses and then the Aam Aadmi Party came back and said ki bari ye Rajasthan ka video hai, aap isko misrepresent kar rahe
2: hain. Abhi Akhilesh jo bata rahe the ki dress ko lekar BJP yatra nikalne wali, jo Pathankot se 18th September se shuru hokar 30 September tak karne wali hai, Nitin Naveen us yatra ko nikalenge, to mujhe lagta hai ki Bharatiya Janata Party bhi is pe dress ke pe badhegi. Aur jaise Amit Shah ji ne kaha tha ki bhai desh ko naksalwad se mukt kiya hai, ab nasha mukt karna hai, to us slogan ko lekar mujhe lagta hai Punjab mein Bharatiya Janata Party jayegi. Congress ke samne samasya ye hai ki bhai matlab Congress koshish karegi ki दलित जो मर गया है तो उसकी सिंपैथी ले, लेकिन आपका ही दलित लीडर आपसे नाराज है चन्नी, वो भी तो एक दलित लीडर है जो आपकी पार्टी से नाराज चल रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो आपको ये है कि आप चन्नी को बचा के रखो तब तक. क्या चन्नी रहने वाले तब तक?
0: बट टू बी फेयर एटलीस्ट ऑन दिस इशू चन्नी इज स्पीकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द कांग्रेस पार्टी.
3: व्हाट ही इज सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चन्नी तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ही मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो नॉट ओनली अबाउट हिम बट ऑल्सो अबाउट कैप्टन अमरिंदर सिंह,
2: बिल्कुल,
3: बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि वेदर ही इज गोइंग टू कम बैक टू कांग्रेस और नॉट.
0: एग्जैक्टली, आई वांट टू कम टू दैट, बट यू नो व्हाट डज दिस डू टू द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. बिकॉज when we are talking about Captain Amrinder Singh, that is the other buzz. Captain Amrinder Singh has been now with the BJP. He formed a different party, then he merged his party into the BJP. I think what, for around 2 years? So he's now merged with the BJP. But when the Prime Minister coined the phrase of Dimagi Naksal,

0: Singh wrote an op-ed in a newspaper where he said that who exactly is a Dimagi Naxal? That definition needs to be made very clear, otherwise you're just going to silence dissent. Now, what made things even more suspicious is an AMA, Ask Me Anything, that Rahul Gandhi did just a couple of months ago, and in that he spoke of Uncle Amrinder. I want you to listen in to what Captain Saab has said about the Congress and Rahul Gandhi has said about Captain Uncle in just the last few months.
1: Captain Amrinder Singh, definitely, I get along with him, he's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder.
2: Rahul ne mere nanak ki man kita. Onu bhai onu edda jata si jata main jaan da usnu bacha. So naturally all the feelings are ready in here.
0: बताइए विनोद जी, अंकल अमरिंदर आ रहे हैं वापस? हेलो तो बोल ही दिया राहुल जी ने.
3: अंकल इसमें अंकल का मतलब अंकल फूफा तो नहीं है?
0: आई हैव नो आईडिया, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. जब वो आएंगे तो पूछेंगे, तो अगले एमए में पूछेगा उनसे.
4: फूफा वो बीजेपी के लिए हो जाएंगे ना.
0: फिर वो बीजेपी से नाराज फूफा होंगे.
4: हां, नाराज फूफा होंगे. एक्चुअली देखिए, अमरिंदर सिंह की जो रिलेशनशिप गांधी फैमिली से रही है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड. ही वॉज ओनली लीडर इन द कांग्रेस पार्टी हु कॉल्ड सोनिया बाई हर फर्स्ट नेम, सोनिया. Not Sonia Ji, not Sonia Gandhi. Because his relationship with Rajiv Gandhi was very close, very close. तो अमरिंदर सिंह, और जब अमरिंदर सिंह का जब को हटाया गया है ना, तो लास्ट जब सोनिया गांधी से उन्होंने बात की और सोनिया ने कहा कि नाउ राहुल विल डिसाइड, राहुल से बात करिए, उसके बाद ही वो नाराज होकर गए और फिर पार्टी बनाई. ऊपर वो तो अब अगर दोबारा वो और बीजेपी में उनको कोई अहमियत मिल नहीं रही है, क्योंकि जो बीजेपी ने जिन लोगों को अब रविंदर सिंह बिट्टू,
0: और वो कुछ फायदा भी नहीं हुआ है,
4: फायदा भी नहीं हुआ,
0: ढिल्लो नहीं है ना, लोग
4: सारे लोग रविंदर बिट्टू ढिल्लो सारे कांग्रेस के ही लोग हैं जो इनको बीजेपी ने आगे किया हुआ.
0: इनफैक्ट जब केवल सिंह ढिल्लो को बनाया गया था, तो अमरिंदर सिंह सेड कि मेरे को तो पूछा ही नहीं, जबकि वो मेरे राइट हैंड मैन या मेरे से क्लोज हुआ करते थे.
4: और अमरिंदर सिंह ही नहीं, सुनील झाकड़ भी इस समय आइसोलेटेड है. अगर अमरिंदर सिंह जाते हैं तो क्या सुनील झाकड़ भी चले जाएंगे उनके साथ, क्योंकि वो दोनों इस वक्त एक साथ है.
0: अरे सर, आपने बोला ना कि बीजेपी में किसको अहमियत मिल रही है, हु इज नाउ गेटिंग अटेंशन. सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ समबडी हु हैज गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन. ही हैज बीन सीन इन द कंपनी ऑफ तरुण चुग, हैज बीन अटेंडिंग मीटिंग्स इन दिल्ली. ही हैड समथिंग इंटरेस्टिंग टू से. आई वांट टू प्ले आउट व्हाट राघव चड्ढा सेड अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द आम आदमी पार्टी. लिसन.
5: मेरा सवाल है और मेरे वोट का सवाल है. आम आदमी पार्टी की ऐसी हालत हो गई, उन्हें रात को सपने में मैं भूत बनकर आता हूं. वो दिन रात राघव चड्ढा करते रहते हैं. मुझे तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की हालत उस एक्स गर्लफ्रेंड जैसी है जिसे बॉयफ्रेंड डंप कर आगे निकल गया है, मूव ऑन कर गया है जिंदगी में, लेकिन आज वो अभी भी मेरे इश्क में, मेरे प्यार में पागल है.
0: समीर जी, क्या चल रहा है राघव चड्ढा के साथ?
6: देखिए, अमरिंदर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अमरिंदर के साथ गठबंधन किया था 2022 के चुनाव में, तो अमरिंदर सिंह ने यह कहा था कि मैं आपके साथ गठबंधन करूंगा तो कम से कम 10 सीटें मैं जीतूंगा. 27 सीटें अमरिंदर चुनाव लड़ते और 26 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी. टोटल 85,000 वोट अमरिंदर को मिले थे, 0.55% वोट मिले थे. अमरिंदर खुद पटियाला शहरी सीट से चुनाव हार गए थे, सिर्फ 26,000 वोट अमरिंदर को मिले थे. तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अमरिंदर को लाके कोई बहुत बेनिफिट नहीं है. फिर उन्होंने पार्टी मर्ज की, उनको लगा कि पार्टी शायद राज्यसभा भेजेगी, उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी. जब केवल सिंह कुछ जिम्मेदारी देगी, लोकसभा में उनकी वाइफ थर्ड सीट पर पटियाला में लड़ी, तो थर्ड नंबर पर उनकी वाइफ चुनाव पर चली गई. तो पार्टी को लगा कि भाई अमरिंदर के पास अब मतलब कोई बड़ा ग्राउंड बचा नहीं इसके अंदर. तो उसके बाद जब केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, तो अमरिंदर सिंह इस बात से नाराज थे कि मुझसे पूछा भी नहीं गया किसको अध्यक्ष बनाना, डायरेक्ट उनको बना दिया गया. कहा जा रहा है कि बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ जो अभी अध्यक्ष थे केवल सिंह ढिल्लो के पहले, वो भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से. हो सकता है कि वो भी वापस कांग्रेस में लौट कर आए, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है. तो मुझे लगता है कि अब अमरिंदर अब 84-85 के हो गए, अब उनको लग रहा है कि भाई अब बीजेपी में कुछ मिलना नहीं है. कांग्रेस में जाऊंगा तो कम से कम ये है कि लोकसभा में वाइफ चुनाव लड़के जीत जाएगी या कुछ होगा. तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि अमरिंदर का जाना चाहता है तो चले जाए.
4: सचिन की रिलेशनशिप भी अमरिंदर से वही है जो राहुल गांधी की अंकल वाली.
0: अच्छा,
4: राजेश पायलट एंड अमरिंदर सिंह दे वर क्लोज फ्रेंड्स. तो सचिन
0: तो वो कॉन्डुइट रहेंगे अंकल को वापस घर वापसी करने के लिए.
4: वो भी एक भूमिका
0: निभाएंगे. बट राघव चड्ढा को तो बताइए, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मेरी अपनी नस काटने के लिए तैयार है, मेरे प्यार में पागल हो रही है अखिलेश जी.
7: ये बात तो सही है कि आम आदमी पार्टी के लोग बड़ी चिंता करते हैं कि राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं. फोन भी आते हैं, पूछते भी हैं कि राघव चड्ढा को कोई भूमिका मिल रही है पार्टी में, नहीं मिल रही. आते हैं, पूछते हैं लोग.
0: अच्छा,
7: अब उसमें दिक्कत ये है कि क्या बताएं. अभी तक तो फिलहाल तो बीजेपी ने कोई स्पष्ट किया नहीं। संदीप पाठक को जरूर उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। राघव चड्ढा को मुझे लगता है कि संभाल के रखा हुआ है, लास्ट मोमेंट पे कुछ कार्ड निकालेंगे, कुछ करेंगे। देखिए राघव चड्ढा आप जानते हैं कि पंजाब के प्रभारी, संदीप पाठक ने, दोनों ने मिलकर बड़ी भूमिका निभाई थी हमारी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। तो ये है घर के भेदी, तो घर के भेदी लंका ढाए ये कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को इसी के लिए संभाल के रखा है बीजेपी ने, आखिरी मौके पे कुछ ना कुछ उनका इस्तेमाल जरूर करेगी।
8: ओके, जस्ट ऑन राघव चड्ढा, सिंस यू सी पंजाब में ना पद्मजा, दिस बिजनेस ऑफ गर्लफ्रेंड एंड स्कॉच एंड बटर चिकन इज ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पंजाबी पॉलिटिक्स। बट ऑन अ सीरियस नोट, इफ यू रिमेंबर ऑन द ईव ऑफ लास्ट असेंबली इलेक्शन इन पंजाब, कुमार विश्वास नोटेड पोएट had made a very serious allegation against the Aam Aadmi Party.
4: Against the Kejriwal.
8: Against Mr. Kejriwal, that Mr. Kejriwal was allegedly on the same side as terrorists and Canadians who were supporting Khalistani movement in Punjab. Now, in 2022, Raghav Chadha was the critical force, so to say, for the Aam Aadmi Party in the state of Punjab. I would be very eager at this stage now that Raghav is on the other side. Will we get to the bottom of the allegation which was made by Kumar Vishwas in 2022? Yeah. Will Raghav Chadha now come clean and say that yes, I mean if any such meeting happened, then sure Raghav Chadha would have known. Let's see whether Raghav
0: that's a very important point like because such things should not just be made fodder for elections. If such charges are made, one should get to the bottom of it and name and shame those people and in fact arrest them. Since we are on the issue of Punjab, some respite that the Aam Aadmi Party government got was from the latest activists on the block. CJP's Saurav Das was in Punjab yesterday. He didn't tell anyone. Samir ji, किसी ने कोई पता था कि ऐसे ये औचक निरीक्षण करने वाले हैं वहाँ पे? वो बकायदा गए. He went to some schools of eminence and then he declared that he was quite impressed by it also and that he also met the education minister. Education minister उनसे मिलने को भी तैयार हो गए.
6: Saurav Das को पंजाब में सारे स्कूल में राम राज्य नजर आया कि सब कुछ बहुत बेहतर है, सब कुछ कोई खराब
0: नहीं. पर उन्होंने कहा कि
6: झारखंड को लेकर भी उन्होंने कहा
0: हम बीजेपी राज्यों में जाते हैं हमारी पिटाई होती है, यहाँ पे पीपल कम एंड
6: नहीं. राजस्थान का सिर्फ राजस्थान में हुआ, बाकी कहीं पिटाई नहीं हुआ. महाराष्ट्र में भी गए थे बीजेपी रूले, वहाँ कोई ऐसा मिसबे नहीं हुआ. सिर्फ राजस्थान का जिक्र कर रहे होंगे शायद, राजस्थान में जिस तरह से मिसबे हुआ था. लेकिन वो झारखंड का भी जिक्र कर रहे थे कि झारखंड में गए वहाँ बहुत अच्छे स्कूल है, पंजाब में गए वहाँ के बहुत अच्छे स्कूल है. अब सौरव दास, अभिजीत दिपके और इनके बारे का बैकग्राउंड तो बताने के बहुत

0: only Harjot Benz. He hadn't tagged Arvind Kejriwal, he hadn't tagged Manish Sisodia, but everyone. So that's a responsive government.
1: Responsive government to hai, lekin the relationship between CJP and Aam Aadmi Party is well known.
0: Is it?
1: भाई वो तो पुराने एक्टिविस्ट हैं आम आदमी पार्टी के,
0: बट वो कहते हैं हमने तो छोड़ दिया, अब हम इंडिपेंडेंट हैं।
1: तो मायके से प्रेम तो रहता है ना, ससुराल जाने के बाद भी। तो इसलिए खाली फूफा की बात नहीं होगी, मायके की बात भी होगी कि भाई जिस पार्टी से आप अपने अलग पार्टी बनाए, दूसरी पार्टी तो नहीं गए आप। राघव चड्ढा को का रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, वो खुद ही बता रहे हैं। लेकिन यहाँ तो रिश्ता ये है, उन्होंने अपना घर बसा लिया सीजेपी बना करके। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अभिजीत दीप के काम कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, आशुतोष रंगा कर चुके हैं, सौरभ दास कर चुके हैं, तो उनके लिए आम आदमी पार्टी तो उनकी पुरानी पार्टी है ना। तो वहां जा करके वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है।
2: इसका एक दूसरा आयाम भी
1: है, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी उनकी कितनी रहेगी?
2: हाँ, exactly.
1: अगर ये इंपॉर्टेंट चीज
0: नो, एंड बाय द वे दिस इज नॉट जस्ट द बीजेपी व्हिच इज क्वेश्चनिंग नाउ, इवन द कांग्रेस इज सेइंग कि भाई हजार ऐसी लिस्ट है, आप हमारे साथ चाहिए। हाँ. आपने किसको, यू डोंट इन्फॉर्म एनीवन, यू डोंट टेल एनीवन यू गोइंग टू बी इन पंजाब।
3: मनीष तिवारी, नाउ लुक एट व्हाट मनीष तिवारी सेड जस्ट लास्ट वीक व्हाइल स्पीकिंग एट अ फंक्शन। ही सेड द आइडियोलॉजी ऑफ द आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस इज द सेम। नाउ हियर इज अ सीनियर कांग्रेस लीडर whose name has not figured, you know, in these potential chief presidential candidates in the state of Punjab. Chakkar kya hota hai that in any state, you know, you go to any state in this country, whether it's UP, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, you can, as I keep saying, you can look at statistics the way you want to. There are certain schools which will be working, there are certain schools which will not be working. Vinod ji is right that CJP, if

0: स्टेट्स में जाएंगे, हम तो आम आदमी पार्टी की स्टेट में भी जाएंगे।
1: नहीं, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके बोला है दैट वी हैव गॉन टू ऑपोजिशन रूल स्टेट्स एंड लुक हाउ ऑल द टीचर्स आर अकंपनिंग सौरभ दास एंड दैट लेडी हु इज अ यूज्ड टू बी अ लॉयर, सब साथ में वहां पे मधु बंगरप्पा जाके कर्नाटका में उनसे मिल रहे हैं जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यहां पे इधर के
2: रात को डिनर किसके साथ कर रहे हैं सौरभ दास,
1: डिनर भी था
2: आम आदमी पार्टी के एमएलए के साथ, रात को डिनर हो रहा है इनका।
3: अगर ये नूरा कुश्ती होगी ना तो इससे जो क्रेडिबिलिटी है उस पे असर पड़ेगा।
1: नो एंड नाउ पीपल आर ओपनली लुक, आई मीन इट्स एंटायरली अप टू देम, दे आर वेल विद इन देयर राइट्स।
4: सोशल ऑडिट होना चाहिए, लेकिन सोशल ऑडिट किसका होगा? जहां से कंप्लेंट आएगी स्कूल गड़बड़ है। अब आप मान लीजिए गए और बहुत अच्छा स्कूल है, आपने देख के सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, उससे नहीं बनता। जहाँ बच्चे वाकई परेशान हैं,
1: करेक्ट,
4: जहाँ आप देखेंगे बिजली नहीं है, सड़क पे वो टीचर नहीं जा रहे हैं, इमारतें नहीं ठीक है, वहाँ जाके सोशल ऑडिट
1: करिए। पीपल इन झारखंड, पीपल इन कर्नाटका विल बी लुकिंग एट दी स्ट्रीट्स एंड दे विल नो व्हाट द रियलिटी इज। बट सिंस वी आर टॉकिंग, हमने मायके की भी बात कर ली, ससुराल की भी बात कर ली, फूफा की भी बात कर ली, तो अब बुआ की बात करना तो जरूरी है। वी हैव टू गो टू द next relation and the very very naraz bua right now in Indian politics is Mayawati. Now Akash Anand, last time when we had spoken, 3 times he had been thrown out of his chief coordinator post, then finally over the delay in tweeting, in retweeting his bua's post, finally not only has he been removed from his post, his father-in-law has been made to retire. Now what is this relationship? Akash Anand was believed to be the inheritor of Mayawati's legacy. Now is it going to be his brother Akhilesh ji? Is Akash Anand out of favor and is Ishan Anand now, and wo bhi kahin Manchester ya kahin se padh ke aaye hain shayad?
3: Nahi, abhi to lag hi raha hai ki unhi ko shayad promote kar rahi hain kyunki jis tarah se unka naam bhi liya unhone to, lekin ek bada interesting ye hai ki mujhe kabhi kisi ne kaha hai ki aap 2-3 din rukiye, is story mein bhi kuch aur bhi badi cheeze honi hai, kuch bada dhamaka bhi hoga, to mujhe lagta hai ki some big development is going to happen,
1: like
3: I don't know what. Because I asked them,
1: क्या ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे?
3: वो अखिलेश यादव ने कहा कि या आ जाए तो आ जाए, स्वागत है।
1: उन्होंने ये नहीं कहा, रिपोर्टर ने उनसे पूछा वो आएंगे, तुम लेके आओगे तो हम ज्वाइन करा लेंगे।
4: लेकिन मायावती के ट्वीट में जो आजाद था कि मैंने उनको आजाद कर दिया, तो उस आजाद का क्या मतलब?
1: It's interesting आपने mention किया, दिखा दीजिए जरा सा वो tweet. Let's show you the tweet that Mayawati put out. It's point number 9. She writes very very long, very expressive tweets. But point number 9 said that इसलिए पार्टी के लोगों से यही बेहतर लगता है, etc. etc. He said उसी प्रकार अब उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से free in brackets
4: आजाद.
1: चंद्रशेखर आजाद समीर जी,
2: देखिए मायावती ऐसे मतलब संकेतों में बात नहीं करती, मायावती जो है बहुत स्पष्ट बोलती है, चाहे ट्वीट हो चाहे बात करे। अगर वो ये कह सकती है कि भई आपने ट्वीट करने में देरी कर दी, चीज़ों को लेकर स्पष्ट कह सकती है, तो वो ऐसे संकेतों में बात नहीं करेगी। अगर मायावती को लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ इसका कोई गठबंधन हो रहा है या उसके पास जाने की है, तो मायावती सीधे उस बात का जिक्र करती। मायावती संकेतों में एक ब्रैकेट
1: में आया, मतलब पहले एक लाइन में उन्होंने कहा कि मैं उनको मुक्त करती हूं,
4: इसलिए किया है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर के उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती। जो बड़ा नेता होता है, इंदिरा गांधी कभी किसी अपने नेता का नाम नहीं लेती थी, मोदी जी भी ज्यादा नाम नहीं लेते हैं, मायावती भी नहीं करती, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में आजाद रखा है।
2: और मुझे लगता है
1: क्योंकि उन्होंने आजाद समाज पार्टी काशीराम बनाया है,
5: वो तो है, वो तो है। बट यू नो पद्मजा, लुक एट इट दिस वे, जस्ट सी व्हाट डज इट टेल यू अबाउट दिस वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड सो ऑफन इन आवर कंट्री ओवर द लास्ट 10 इयर्स, डिनेस्टी, फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स, राइट? अखिलेश यादव इन अ लाइटर वेन जस्ट अ फ्यू वीक्स बैक वाज पॉइंटिंग आउट दैट हमारी पार्टी क्यों नहीं टूटी, समाजवादी पार्टी, एंड ही सेड हमारी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हमारे परिवार के इतने लोग हैं, सांसद बने हुए हैं। नाउ हियर इज
1: क्योंकि सारे सांसद हमारी
5: पार्टी में, बट हियर इज मायावती,
1: हमारे परिवार से, सॉरी,
5: मायावती, अ लीडर हु हैज बीन of, you know, multi-term chief minister, full majority government between 2007-2012, if after all these years, Bhenji has not been able to put in place a cogent power transfer or passing the baton structure, then the responsibility completely lies with her. You speak to people in her party at the lowest level, they will tell you that, you know, we have full faith in her. But the point is, we don't know which side she's on. You know, we've forgotten what had happened in the Jaunpur Lok Sabha ticket distribution that was taking place in 2024. She was literally waiting for the BJP to declare its candidate so that she could declare her own candidate. In this kind of an environment, I think Bhenji is losing the last ounce of credibility that she'd had. I, for one, I'm disappointed because, you know, for the longest time, I thought that this would be her last election, when she could have really made a dent for herself. If with this story playing out, the way it's playing out, and to just conclude Akhilesh's point, the way it's playing out, what will happen 2-3 days down the line, for all you know,

0: I mean, you know, is Akash going to be back? No. Is Akash going to be in Chandrasekhar Azad's party? Well, perhaps, who knows? Is there going to be some alliance between the BSP and or the BJP and the Congress? The chance of that at this point is no. Mayawati is losing the cards which she's always held closest to her chest to strike the best political
1: deal. And the question is, on under is this under somebody's pressure? What is the logic? I just want to add one more point, because since we're talking about Uttar Pradesh, there's information with NDTV that close to one third of the sitting MLAs are now going to lose their ticket. That's the information that we have.
2: BJP.
1: So there is in the BJP. So the sitting MLAs of the BJP are at least 30% of them. So ticket batenge to bahut saro ke ticket katenge bhi usme. That is the information that we have. Haan Samir ji,
3: Mayawati ko leke jikr kar deta hu ki dekhiye Mayawati kaisi rajneeti karti hai aur party ko kitne matlab buri condition mein leke chali gayi ki aaj 36 saal ke baad party is sthiti mein aa gayi hai ki aapka ek MLA nahi hai. Rajya Sabha mein aapka ek sansad bas jo bacha hua agle month retire ho rahe hain Ramji Suman. Lok Sabha mein aapka ek sansad nahi
2: hai. Ramji Suman inki thodi hai.
3: Nahi nahi, Samajwadi Party.
0: Samajwadi Party.
2: Samajwadi Party.
0: Sorry, Ramji Gautam.
3: Ramji Gautam ko bheja tha. Wo agle mahine retire ho rahe hain. To aapke paas Lok Sabha mein bhi sansad nahi hai. Pradesh Vidhan Sabha mein aapka ek sansad nahi hai. Pradesh vidhayak aapka ek nahi hai. Jo Vidhan Parishad mein the aapke भीमराव अंबेडकर जो थे वो रिटायर हो गए. तो आज अगले महीने के बाद मायावती का किसी भी सदन में, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में एक भी मेंबर नहीं रहेगा. पहली बार 36 इयर्स में ऐसा आने वाला है. तो ये पार्टी जो 2007 के इलेक्शन में 206 सीटें जीतती है 30% वोट के साथ, वो आज एक भी एमएलए नहीं और 9 से 10% के वोट पर आ गई है
1: सिंगल डिजिट में.
3: पूरी और मायावती ने क्या किया 2022 के चुनाव के बाद? न मायावती रैली करती है, न 2024 का चुनाव मायावती ने लड़ा, ना आकाश आनंद को चुनाव लड़ने दिया, न मायावती तैयारी में है कि किसी लोगों को लीडर्स को खड़े करें. जितने मायावती के लीडर्स से बाबर सिंह कुशवाहा हो, नसीरुद्दीन सिद्दीकी हो, सब लोग पार्टी छोड़कर चले गए.
1: दैट लीव्स द फील्ड वाइड ओपन फॉर पार्टीज लाइक द कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी टू ट्राई एंड वू दिस मैसिव एंड डिसाइसिव दलित वोट. बट आई वांट टू गिव द फाइनल वर्ड टू अखिलेश जी. One third of the sitting BJP MLAs are going to lose their ticket?
4: Yes.
1: Why?
4: Massive. Because this is what happening. This is what happening in the other BJP ruled states.
2: Yeah, SOP.
4: When you have.
1: Yeah, but in Uttar Pradesh in particular, is there greater than usual anti-incumbency
4: of
1: against the
4: is.
1: Local MLAs?
4: MLAs. There is a lot of anti-incumbency against the MLAs, and
1: why?
4: That's why the
1: what
4: BJP.
1: What is the factor?
4: Because they have performance. Manage the issue is the performance, whether they perform as per the expectations or not. People believe that they have not done.
0: No, but this is a slightly tricky debate, and I slightly disagree with what Akhilesh is saying. You know, because this is where the narrative building comes into play. You say naraazgi against the MLA. Arey, bhai, MLA kehta hai ki jo zila adhikari meri baat hi nahi sunta. Again to go back, main ek brahman hu. मेरा जिलाधिकारी, मेरा डीएम एक ठाकुर है, वो मेरे फोन पे ही नहीं आता. मेरा अगर काम ही नहीं होगा, इफ आई कैन नॉट सेटिस्फाई माय कंस्टिट्यूएंसी मेंबर्स बिकॉज ही इज रिपोर्टिंग टू द चीफ मिनिस्टर, यू होल्ड मी अकाउंटेबल. अरे द चीफ मिनिस्टर इज अ फेस, व्हाई शुड द अकाउंटेबिलिटी.
1: सर्वे तो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी नहीं है, ये लोकल एंटी.
0: दैट इज अ नैरेटिव.
4: दैट सर्वे विल बी द बेसिस.
0: बट एग्जैक्ट, सो सर्वे इज अ बेसिस. यू वोंट लेट हरीश द्विवेदी, देयर आर मल्टीपल शलभमणि त्रिपाठी, देयर आर मल्टीपल, you know, Brahmin MLA, so to say, who will tell you what is the problem of real politics in the state of UP. I completely, by the way, diss this argument that please hold the MLA MP responsible.
1: As you said last time, T-series ka music baj raha hai Uttar Pradesh.
0: Ek face-driven party hai, face-driven state hai, unki koi
4: BJP ka Uttar Pradesh, caste is very important. Caste is going to play a decisive role as far as the election results are concerned. So, be it MLA, be it MP, whatever, you know, ultimately what matters is the caste.
1: Yeah.
4: So they have to come down
1: and
4: to that.
1: And that is going to be very important.
4: So if you are replacing a Brahman, if you are replacing a Brahman MLA with another Brahman candidate, so how does it matter? It won't affect the
1: BJP.
2: BJP ka standard SOP hai, ticket 30%, 40% katte hi hai. Last year bhi,
1: chutney karte rahi
2: hai. Last time mein, 2022 mein, टिकट कटने थे
3: 122 टिकट काटे थे 2022 में.
2: कटने से बस इसलिए गए कि लास्ट मोमेंट पर बीजेपी के कई नेता जो है समाजवादी पार्टी में चले गए. स्वामी प्रसाद मौर्य, राम सिंह सैनी, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, मिनिस्टर्स, वो जो पैनिक हुआ उसमें कईयों के टिकट बच गए. इस बार अगर कोई पैनिक हो जाए तो अलग बात है, वरना

0: 7 nations, half the world population.
1: A new world order with India at the center.
2: A whopping one-third of global GDP. A new power equation.
3: BRICS 2026, India's global moment.
0: As the world comes to NDTV, when it really matters.
4: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: Hindustan mile, Hindustan se.
6: देश का टायर जेके टायर
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात.
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
5: अरे मेरे राजा.
6: सबका राजा Pure Masala.
1: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर जेके टायर
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेस बना रहा है।

भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक

0: signal. The same thing is happening here also. The Chidambaram statement.
1: So you're saying that this is being done deliberately to kind of
0: This is what the BJP is saying.
2: Forget what the BJP is saying. Just look at all the signaling which is coming.
1: The optics.
2: Repeatedly from the Congress party. The Congress believes when the Americans suddenly hit upon us with tariff war, what was the response? Oh, dekho Modi, you know, he was going and he was
1: Narendra surrender.
2: So all this is a part and parcel of what the Congress believes is a valid and just strategy for itself to consistently keep the focus against the Prime Minister. Bear in mind, you know, I mean, a few months from now, you'll have important elections coming in various important states. Ab aap mujhe ek baat bataiye, kal ko agar ek joint statement aati hai BRICS ki, jisme aap Iran aur UAE ke beech mein waqai agar maan lijiye, if there is some kind of a joint statement which comes up, and I understand that there will be some statement which will come up, what kind of a response will we then have from the Congress party? Will they say, nahin, ye acceptable hi nahin hai. So then you'll end up accepting the legitimacy of BRICS. No, right now you're saying, ye toh paise ki barbaadi hai, it's marketing.
1: Not a big deal, kya hai, shorshe baadi hai, toh ye strategy hai, samjhiye.
3: Do you think that there will be a joint statement between with the UAE?
2: No, I'm saying there will be a BRICS statement. No,
3: BRICS statement.
2: BRICS ye declaration aayegi.
3: Because there is no bilateral talks between UAE and Iran.
2: But within that BRICS declaration, there is bound to be some reference.
1: No, and they managed to get everyone in the same room. That in itself is a big deal. The fact that within a matter of 2 weeks, you've got Mr. Modi meeting Mr. Putin. Pehle wo SEO mein mile, now they're meeting here again. That counts for something. You can't say it's a waste of time aur kuch mil nahi raha hai.
4: Mujhe lagta hai Padmaja, Congress ko usse bachna chahiye tha. Chidambaram ke jo bayan aaya jis tarike se, dekhiye G20 jab hua tha Lok Sabha chunav ke pehle, तब कांग्रेस ने कहा था कि अभी लोकसभा चुनाव है तो उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पीआर के रूप में इस इवेंट को इस्तेमाल कर रही है. जिस तरीके से G20 को लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, अब फिर अब ब्रिक्स को लेकर आप चिदंबरम जिस तरीके से बयान दे रहे हैं या कांग्रेस का रिएक्शन जिस तरीके से लेकर आ रहा है, देखिए तो देश के अंदर एक इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और ये कहीं भारतीय जनता पार्टी का तो ही नहीं. तो मुझे लगता है कि अतिथि देव भव की भावना तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि हमारे देश में जब इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो आप इस समय इस ब्रिक्स के बारे में कोई निगेटिव बातें ना बोले. आपको सरकार से प्रश्न पूछना है, ब्रिक्स से आपको क्या हासिल हुआ, उसके बाद आप लोकसभा का सत्र आता है बाकी आता है आप पूछ सकते हो. ब्रिक्स शुरू होने के पहले आप इस तरीके से निगेटिव स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है कि इससे
3: अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार नहीं होती कोई और सरकार तो भी करते हैं.
1: नहीं नहीं, टैंजिबल बेनिफिट छोड़िए, देयर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग दैट व्हाई इज देयर बैरिकेडिंग, कि ट्रैफिक इज अ मेस, द सिटी इज अ नाइटमेयर, व्हाई हैव यू डन दिस.
2: दीस आर यू नो कंप्लीटली फ्रिवोलस स्टेटमेंट्स व्हिच कैन बी मेड बाय ट्विटर आरजी.
1: नो नो, बट देयर इज अ प्रॉपर नैरेटिव सेइंग दैट यू नो इंडिया सिंपली कैन नॉट हैंडल सच लार्ज इवेंट्स.
2: आई थिंक यू नो पद्मजा, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई मिस्टर चिदंबरम मे हैव डिसाइडेड टू जंप इनटू दिस एंटायर डिबेट इज बिकॉज़ देयर इज अ व्यू which is held by a section of economists in our country, led by the venerable Mr. Sujit Balla himself, who's written today, that India should not be a part of this BRICS, forget BRICS and start looking towards Europe and start looking towards US. I'm now, here's Mr. Balla, and I remember last time I was with you guys, I was saying that, oh, you know, here's Mr. Balla's position, we all know. Now, you can say, take it with a pinch of salt, you can say that Mr. Balla is not getting anything from this government, so maybe he's saying this. If Mr. Chidambaram had a valid economic criticism to say that India is not gaining anything by becoming a member of BRICS, I'd have taken that. We could have, you know, gotten together to debate that. But to say ki this is marketing, what are you getting? Nothing, you know, barricading, this, that, I think that's missing wood for the trees.
1: It seems like what Mr. Jaitley used to call the compulsive critics. People who want to find the problem. But I want to ask you about it.
3: Different take. There is a Trump saab jo hai na, he's not in favor of BRICS. Anti-West BRICS nahi hai. बट ट्रंप ने खुद को एंटी ब्रिक्स बना लिया है, तो ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते कि ब्रिक्स सक्सेस हो. और ये अमेरिकन नैरेटिव है कि इंडिया ब्रिक्स से बाहर हो जाए और ये हो जाए. मुझे लगता है इंडिया को रहना चाहिए ब्रिक्स में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ठीक कर रहे हैं अगर ब्रिक्स में वो सारी कंट्रीज को एक साथ लेकर के.
1: आर यू सेइंग मिस्टर चिदंबरम इज एकोइंग द ट्रंप नैरेटिव?
3: आई कांट,
2: और बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन नैरेटिव.
3: ये अमेरिकन नैरेटिव है, अब वो चिदंबरम करें या कोई करे, मतलब ये या भल्ला जी करें या मैं करूंगी कोई, ये टोटल इंटरनेशनली अमेरिकन नैरेटिव है. दे आर अगेंस्ट ब्रिक्स टोटली. ट्रंप के तो स्टेटमेंट आप देखिए ना, उन्होंने कहा था कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा.
1: सो व्हील्स विद इन व्हील्स, आई डोंट नो व्हाट द मोटिवेशन इज, बट वेल यू हर्ड द क्रिटिसिज्म, बट आई रियली डू वांट टू आस्क बिकॉज यू कवर्ड यू नो इवेंट्स सच इवेंट्स अक्रॉस द ग्लोब. अखिलेश जी, are there such traffic restrictions in other parts of the country as
0: of
1: well?
0: Of course.
1: In other parts of the world?
0: देखिए 11 देशों के तो प्रमुख आ रहे हैं और 10 अन्य देश, 21 देशों के तो ये हैं, यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं, दुनिया भर के और ऑर्गेनाइजेशन से उनके हेड आ रहे हैं यहाँ पर. एक साथ आप इतने लोगों को अपने देश में बुला रहे हो, आप उनमें से जानते हैं कई तो बहुत ज़्यादा जिनको कि सिक्योरिटी का थ्रेट है, चाहे प्रेसिडेंट पुतिन हो.

0: हो चाहे प्रेसिडेंट जिनपिंग हो,
1: ईरान के जो
0: ईरान के हैं उनको थ्रेट है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए होस्ट, एज ए रिस्पॉन्सिबल होस्ट, दैट यू शुड इंश्योर 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी फॉर देम.
2: बट लेट्स शिफ्ट फोकस नाउ टू अ स्टेट दैट्स मेकिंग नॉइज quite disproportionate to its size. I am talking about Punjab. And there seems to be a flurry of activity in the state in the recent past, and I wonder if it's because of a leadership reshuffle that has taken place. This week, the Congress appointed its new general secretaries in charge of several states. Randeep Singh Surjewala got additional charge of Gujarat. He's already in charge of Karnataka. Bhupesh Baghel, he was shifted from Punjab to Assam. And Sachin Pilot got charge of this high value state. Since then, there seems to be a new energy in the party unit in Punjab, and even the warring factions, no pun intended, seem oddly friendly with each other. So let me start by asking you, Bhupen Chaubey, because last week you had said the cat among the pigeons by saying that Amrinder Singh Raja Warring is going to go. Warring is still there, but Mr. Baghel has gone. Now what's going to happen?
3: Well, I got 50% right
2: of that story.
3: But we don't know. We don't know what will happen on that front yet. I mean, I'm not saying that Warring will continue till the elections. Sachin Pilot has now made a statement that there is not going to be any chief ministerial face and that Rahul Gandhi is going to be the person. I think one of the reasons why, the question to raise perhaps is, why was Bhupesh Baghel removed? Yeah. And why has Sachin Pilot been brought back, been brought into Punjab? I think Mr. Baghel, in the eyes of the Delhi Congress leadership, was becoming a person who was getting too close to a certain faction of the Congress party in the state of Punjab, and therefore was unable to, you know, to manage all the friction and carry forward all the leaders. Now, this is not to say that just because Sachin Pilot has now been made the general secretary in charge of the state of Punjab, all the warring factions will suddenly, you know, let go of their guard. Sukhjinder Randhawa has worked in the state of Rajasthan as a key observer along with Sachin Pilot.
2: Pratap Singh famously called that meeting for which no one went, neither
3: no
2: Mr. Gehlot
3: right?
2: went, nor
3: exactly.
2: Mr. Pilot.
3: Yeah, so that's one.
2: And he was state in charge.
3: Pratap Singh Bajwa, the present leader of opposition, who went with the bouquet to give to Sachin Pilot, has been tweeting away that Sachin is my younger brother. Mm-hmm. Now, if Sachin is a younger brother to everybody, then I don't know how this younger brother is going to really be able to crack the whip. Mm. The problem before the Congress in Punjab still remains what it was pre-Sachin, which is, are all these various leaders whose names I'm taking, are all these leaders going to work together as one cohesive unit under Sachin Pilot? Hmm. Or is the story still the
2: same? Samir ji, andar ki khabar kya hai? Kyunki badi ajeeb si cheez hui. One day after Sachin Pilot was made the general secretary in charge, Sukhjinder Singh Randhawa, jo sabse zyada keh rahe the ki bhai Amrinder Singh Raja Warring ko hatao, unhone ek reporter ko bola, humne to kabhi bola hi nahi tha. Humne kahan bola tha? Maine kabhi bola ki PCC president change kijiye.
4: Dekhiye, Sachin Pilot mujhe lagta hai bahut zyada khush nahi honge. Wo Rajasthan ka pradesh adhyaksh banne ke soch rahe the aur 28 mein to Rajasthan mein chunav hai. तो राजस्थान का एक बड़ा वर्ग है जो खुश है कि सचिन पायलट को पंजाब भेज दिया गया है. तो कम से कम वो अब प्रदेश अध्यक्ष की अभी फिलहाल दौड़ में नहीं है. और डोडासरा जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है वो खुश हो रहे होंगे कि थोड़ा मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा. अब सचिन पायलट इसके पहले छत्तीसगढ़ के इंचार्ज थे. छत्तीसगढ़ का चुनाव परिणाम क्या आया, अब उनको वहाँ भेजा गया. और वहाँ रंधावा जो हैं पंजाब के, वो राजस्थान के प्रभारी थे. तो उनका जो व्यवहार राजस्थान के अंदर रहा था सचिन पायलट के साथ, अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से वो काम कर रहे थे. अब सचिन पायलट उन्हीं के राज्य में प्रभारी बनकर गए हैं जहाँ से रंधावा आते हैं. तो अब सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसे रंधावा चन्नी
2: पर उनके रिश्ते कैसे हैं, ये सारे जो डिफरेंट कैंप्स हैं उनके साथ.
4: नहीं ठीक है, देखिए सचिन पायलट
2: सुलह करा पाएंगे, वो नहीं करा पाएंगे,
4: नहीं करा लेंगे सचिन पायलट. और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को भेजने के पहले चन्नी से बात हुई थी. चन्नी से बात हुई, उसके बाद सचिन पायलट को भेजा गया. और चन्नी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है सचिन पायलट के लिए कि वेलकम करने के लिए, बता रहा है कि चन्नी उससे बहुत खुश है आने से. भूपेश बघेल वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि भूपेश बघेल पंजाब के अंदर कंटिन्यू करें. और मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान को लगा हुआ कि अगर भूपेश बघेल रहेंगे तो चुनाव बहुत बुरी तरीके से मतलब डिस्टर्ब होगा.
2: क्योंकि यहाँ पे सच में एक ऑप्शन है कांग्रेस का जो उनके जीतने की चांसेस हैं. लड़ाई खत्म हो गई या इन कांग्रेस नेवर से नेवर,
1: लड़ाई
2: यू नेवर नो व्हेन द फैक्शनलिज्म इज गोइंग टू कम बैक.
1: कभी होती नहीं है नेताओं में. ये कह सकते हैं कि फिलहाल जैसे सीज फायर वाली स्थिति बन गई है सचिन के जाने से. उसका रीजन है कि सचिन की जो छवि, जो भी भूपेन ने भी कहा कि भूपेश बघेल अलाइन हो गए थे एक सेक्शन के साथ, और यही प्रॉब्लम हो गई थी पिछले चुनाव में जब हरीश रावत थे उनके साथ भी यही हो गया था. ये दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर जो है ये अलाइन हो गए थे. सचिन के साथ क्या है कि सचिन एक तो राजस्थान से हैं, मतलब यूपी से हैं ओरिजिनली, बट राजस्थान में काम कर रहे हैं. तो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर्स मिलते हैं, वो राजस्थान की तासीर को बेहतर समझते हैं, सॉरी पंजाब की तासीर को बेहतर समझते हैं भूपेश बघेल की तुलना में। फिर चूंकि राजेश पायलट के बेटे हैं, उनकी लेगेसी है, तो पंजाब के कई सारे लीडर्स एक ज़माने में राजेश पायलट से ओबलाइज भी रहे हैं। राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो रिश्ता भी सचिन का है। तो सचिन के साथ जो एक पर्सनल टच है लीडर्स का, वो भूपेश बघेल के साथ नहीं था। तो ये सब चीज़ों को देख के, और यंग है, न्यूट्रल है, और सचिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों को करीब लाने में ज़्यादा कामयाब होंगे, बेहतर।
2: अब और एक एक कोइंसिडेंस भी है दैट अब राजस्थान का एक फेस ऑफ होगा पंजाब के अंदर, क्योंकि सतीश पुनिया है बीजेपी के प्रभारी और सचिन पायलट राजस्थान
1: से हैं, जाट और एक गुजर,
2: जाट वर्सेस गुजर होने वाला है।
4: 2022 में भी दोनों राजस्थान से प्रभारी थे, हरीश चौधरी पहले ये थे अपने, जिसका आपने नाम लिया अभी, हरीश रावत थे, उसके बाद उनके हरीश चौधरी बने राजस्थान से थे, और गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से 2022 में थे। तो 2022 में भी दोनों राजस्थान के जो नेता थे वो पंजाब के प्रभारी रहे।
2: इंटरेस्टिंग, बिफोर वी pop the champagne and think that all is going to be well within the Congress, let me just quickly tell our viewers that just when they were giving conciliatory statements, you had a delegation of the Congress go and meet the governor about the suicide of a man, of a Dalit man, Gulzar. And in that delegation that met the governor, there was only Charanjit Singh Channi, Sukhjinder Singh Randhawa, and none from the warring camp were over there. That meeting happened yesterday. So if the Congress is experiencing this burst of energy of late in Punjab, one party that has been at the receiving end, and an unfortunate receiving end, is the ruling Aam Aadmi Party. Now, what happened? It all started with the suicide by a Dalit laborer in the Sangrur district of Punjab. This man, Gulzar, had questioned Punjab's finance minister, Harpal Cheema, about the drug problem in the state during a public program. He basically went there with a black flag. Gulzar then said that his son is a victim of chitta, nasha, the drug problem that exists. And in this public meeting in front of Harpal Cheema, Gulzar said that it's still being sold openly and my son is an addict. Now, allegedly after this, he faced political pressure. He was picked up by the sarpanch. He was asked to issue an apology. And he says that he was tortured to an extent that he consumed poison. He had these sulfas tablets. A few days later, he died, but not before he left this dying declaration.
5: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ?
6: ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਜੀ।
5: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
6: ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਪਾਸ ਹੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ।
5: ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ
6: ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
2: Now, to make matters worse, Gulzar's family says that their father's body was forcibly cremated under police protection, and this has given fresh impetus to the attack on the Bhagwant Mann government by both the Congress and the BJP.
7: ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਤੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਦਬਕੇ ਮਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FM 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
2: Akhilesh, this has all the ingredients that can prove potent against the Aam Aadmi Party.
4: Absolutely.
2: It's a Dalit laborer, it's in the Chief Minister's own constituency, drugs are involved. What do you see will happen? Will Harpal Cheema have to go?
0: Well, it's a serious indictment of the Aam Aadmi Party government, because remember in 2022 when they came to power, that time the famous movie Udda Punjab, and then this drugs problem, and Aam Aadmi Party's promises that, you know, they will completely remove it from the roots. The drug problem will be completely uprooted from Punjab. That was the election promise made by the Aam Aadmi Party. But after 5 years, what has happened? A person commits suicide because his son is taking drugs, and that too in the constituency of the Chief Minister.
2: And he takes the name of the minister.
0: Finance Minister, and take the name of that. And also, because what has happened is that he is Dalit also.
2: Yeah.
0: So all the factors, you know, they are going against Aam Aadmi Party. And remember now, not only the Congress Party, but also the BJP. BJP is going to take out a big yatra against the drugs. BJP President Nitin Naveen will launch this yatra. Home Minister Amit Shah will also be part of that yatra. So BJP is going to make it a big issue. and that will actually hurt the Aam Aadmi Party in the upcoming assembly elections.
2: But who do you see gaining more from this, Bhupen? Is it going to be the BJP or the Congress? Because the Congress is front-footing it, saying that this is a Dalit laborer. You know, you had delegations of the Congress going and meeting the governor. BJP yesterday tried to go to this village, but they said they were stopped. Who will gain more from
3: that? That's why I think Sachin Pilot's appointment at this stage becomes that much critical. Because this is an opportunity. This is a godsend opportunity, I would say, no pun intended, to the Congress party. The political semantics of Gulzar Singh's death are such that it can shift hugely the very significant and critical Dalit vote base in the state of Punjab. We all have seen how Rahul Gandhi consistently in different parts of the country has been trying to position himself as the harbinger and the savior of Dalits in the state. The Aam Aadmi Party, I'm in agreement with Akhilesh, is clearly on the back foot in the state of Punjab. They have all kinds of problems. Arvind Kejriwal, I think a few weeks back, was openly celebrating the launch of what they called Pila Punjab, which was a bulldozer which was
2: because they carried out the entire Yudh Nasha Virudh, Yudh and Nasha so many Virudh. Of these buildings were brought down by supposed drug peddlers.
3: It was a critical part of their election campaign at the time of the 2022 Punjab Assembly elections. Clearly, they have not succeeded in dealing with
2: it. So then why aren't they dismissing Harpal Chima? Why are they digging in their heels?
3: Well, if anything, they have
2: because
3: brought...
2: here a man has taken his name in his dying declaration.
3: They have brought Mr. Chima in their highest decision-making body.
2: In the PSC.
3: Which is also a messaging which is going. Now, you could well argue that maybe Mr. Kejriwal is taking a leaf from the Prime Minister's book, that it's not that the BJP also, gets rid of a leader just because some controversy has happened. Mr. Kejriwal at this stage has a very clear and I would say a reduced playbook to play with. Harpal Chima in that sense plays a very, very critical role. He's a state finance minister. He's, clearly blessed with the ability to bring in resources within the party as well. To let go of him or to remove him would have ended up, exposing the Aam Aadmi Party a little more at this stage. And I don't think Kejriwal wants to take that chance at this stage.
2: In fact, if anything, they have gone on the offensive. Because now, Sameer Ji, here, the family has said that and Congress is comparing it to Hathras. Yeah. And the optics are the same because there was also a Dalit child, here was a Dalit laborer. You have taken it and showed those pictures. You show those pictures where you've got an entire police cordon around where that pyre is being lit. So, इससे मतलब स्ट्रैटेजी क्या है आम आदमी पार्टी की इसमें?
4: नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट है चुनाव के पहले इस तरीके से घटना और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगना. देखिए 2022 के चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल ने सब यही कहा था ना कि भाई कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल इतने समय शासन किया पंजाब के अंदर और ड्रग्स की समस्या इनके इसमें बड़ी मजीठिया पे जिस तरीके से आरोप लगाया था कि भाई ड्रग्स की डील करते हैं लेकर अकाली दल के नेता के ऊपर और केजरीवाल ने कहा था हम आएंगे तो हम ड्रग्स फ्री पंजाब को बनाने वाले हैं. 5 साल बाद आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा. आपको इतना प्रचंड मैंडेट मिला 92 सीट्स आप उसमें जीत जाते हो उसके बाद 5 साल बाद भी आप ये बताने की स्थिति में नहीं हो कि ड्रग्स को लेकर आपने क्या काम किया. और जब अब ये कहा जाता है कि मतलब जो राघव चड्ढा ने भी कहा कि राशन की दुकानों पर ड्रग्स की बातें हो रही है स्कूल कॉलेजेस के प्रमाइसिस के आसपास ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा इस मामले को लेकर आपने किया गया. आपको जनता के बीच चुनाव में इस बात को लेकर जाना होगा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी कहेगी कि भाई पंजाब की जनता से कहेगी आपने कांग्रेस को इतने लंबे समय देखा आपने आम आदमी पार्टी को पूरा इतना प्रचंड बहुमत देखा एक बार अब हमको पूर्ण बहुमत दीजिए हम इस मामले को देखना चाहते हैं.
2: दिस इज एन इशू दैट आम आदमी पार्टी इज वेरी टची अबाउट. अ फ्यू डेज अगो हरभजन सिंह हैड ट्वीटेड दैट वीडियो ऑफ अ मैन who was out of his senses and then the Aam Aadmi Party came back and said ki bari ye Rajasthan ka video hai aap isko misrepresent kar rahe hain.
4: Abhi Akhilesh jo bata rahe the ki dress ko lekar BJP yatra nikalne wali jo Pathankot se 18th September se shuru hokar 30 September tak karne wali hai Nitin Naveen us yatra ko nikalenge to mujhe lagta hai ki Bharatiya Janata Party bhi is pe dress ke pe badhegi aur jaise Amit Shah ji ne kaha tha ki bhai desh ko naxalwad se mukt kiya hai ab nasha mukt karna hai to us slogan ko lekar mujhe lagta hai Punjab mein Bharatiya Janata Party jayegi. Congress ke samne samasya ye ki bhai matlab Congress koshish karegi ki दलित जो मर गया है तो उसके सिंपति ले लेकिन आपका ही दलित लीडर आपसे नाराज है चन्नी वो भी तो एक दलित लीडर है जो आपकी पार्टी से नाराज चल रहा है तो सबसे बड़ी चुनौती तो आपको ये है कि आप चन्नी को बचा के रखो तब तक क्या चन्नी रहने वाले तब तक.
2: बट टू बी फेयर एटलीस्ट ऑन दिस इशू चन्नी इज मिस्टर चन्नी स्पीकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द कांग्रेस पार्टी.
0: बट व्हाट ही इज सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चन्नी तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे. ही मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो नॉट ओनली अबाउट हिम बट ऑल्सो अबाउट कैप्टन अमरिंदर सिंह.
4: बिल्कुल
0: बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि वेदर ही इज गोइंग टू कम बैक टू कांग्रेस और नॉट.
2: एग्जैक्टली आई वांट टू कम टू दैट बट यू नो व्हाट डज दिस डू टू द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज when we are talking about Captain Amrinder Singh, that is the other buzz. Captain Amrinder Singh has been now with the BJP. He formed a different party, then he merged his party into the BJP. I think what, for around 2 years? So he's now merged with the BJP. But when the Prime Minister coined the phrase of Dimagi Naksal, Amrinder Singh wrote an op-ed in a newspaper where he said that who exactly is a Dimagi Naksal? That definition needs to be made very clear, otherwise you're just going to silence dissent. Now, what made things even more suspicious is an AMA, Ask Me Anything, that Rahul Gandhi did just a couple of months ago, and in that he spoke of Uncle Amrinder. I want you to listen in to what Captain Saab has said about the Congress and Rahul Gandhi has said about Captain Uncle in just the last few months.
8: Captain Amrinder Singh, definitely, I get along with him, he's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder.
9: Rahul ne mere naam ki man ki ta. But ono be ono aida jata si jata main jaande usno. But bacha. So naturally all the feelings are ready in here. Apne ka.
2: बधाई विनोद जी, अंकल अमरिंदर आ रहे हैं वापस. हेलो तो बोल ही दिया राहुल जी ने.
0: अंकल इसमें अंकल का मतलब अंकल फूफा तो नहीं है?
2: आई हैव नो आइडिया, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. जब वो आएंगे तो पूछेंगे, अगले एमए में पूछेगा उनसे.
1: फूफा वो बीजेपी के लिए हो जाएंगे ना.
2: फिर वो बीजेपी से नाराज फूफा होंगे.
1: हां, नाराज फूफा होंगे. एक्चुअली देखिए, अमरिंदर सिंह की जो रिलेशनशिप गांधी फैमिली से रही है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड. ही वॉज ओनली लीडर इन द कांग्रेस पार्टी हु कॉल्ड सोनिया बाई हर फर्स्ट नेम, सोनिया. Not Sonia Ji, not Sonia Gandhi. Hmm. Because his relationship with Rajiv Gandhi was very close, very close. So, Amrinder Singh, or when Amrinder Singh ka jab ko hataya gaya na, to last, jab Sonia Gandhi se unhone baat ki, aur Sonia ne kaha ki, now Rahul will decide, Rahul se baat kariye. Uske baad hi wo naraaz hoke gaye. Aur phir party banayi upar wo sa. To ab, agar dubara wo, aur BJP mein unko koi अहमियत मिल नहीं रही है, क्योंकि जो बीजेपी ने जिन लोगों को अब रविंदर रवनीत सिंह बिट्टू,
2: और वो कुछ फायदा भी नहीं हुआ है,
1: फायदा भी नहीं
2: हुआ, ढिल्लो सारे लोग,
1: रवनीत बिट्टू, ढिल्लो, सारे कांग्रेस के ही लोग हैं जो इनको बीजेपी ने आगे किया हुआ.
2: इनफैक्ट जब केवल सिंह ढिल्लो को बनाया गया था, तो अमरिंदर सिंह सेड कि मेरे को तो पूछा ही नहीं, जबकि वो मेरे राइट हैंड मैन या मेरे से क्लोज हुआ करते थे.
1: और अमरिंदर सिंह ही नहीं, सुनील झाकड़ भी इस समय आइसोलेटेड है. अगर अमरिंदर सिंह जाते हैं तो क्या सुनील झाकड़ भी चाहे जाएंगे उनके साथ, क्योंकि वो दोनों इस वक्त एक साथ
2: है. सर, आपने बोला ना कि बीजेपी में किसको अहमियत मिल रही है, हु इज नाउ गेटिंग अटेंशन. सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ समबडी हु हैज गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन. ही हैज बीन सीन इन द कंपनी ऑफ तरुण चुग, हैज बीन अटेंडिंग मीटिंग्स इन दिल्ली. ही हैड समथिंग इंटरेस्टिंग टू से. आई वांट टू प्ले आउट व्हाट राघव चड्ढा सेड अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द आम आदमी पार्टी. लिसन.
10: मेरा सवाल है और मेरे वोट का सवाल है. आम आदमी पार्टी की ऐसी हालत हो गई है, उन्हें रात को सपने में मैं भूत बनकर आता हूं. वो दिन रात राघव चड्ढा करते रहते हैं. मुझे तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की हालत उस एक्स गर्लफ्रेंड जैसी है जिसे बॉयफ्रेंड डंप कर आगे निकल गया है, मूव ऑन कर गया है जिंदगी में, लेकिन आज वो अभी भी मेरे इश्क में, मेरे प्यार में पागल है.
2: समीर जी, क्या चल रहा है राघव चड्ढा के साथ?
4: देखिए, अमरिंदर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अमरिंदर के साथ गठबंधन किया था 2022 के चुनाव में, तो अमरिंदर सिंह ने यह कहा था कि मैं आपके साथ गठबंधन करूंगा तो कम से कम 10 सीटें मैं जीतूंगा. 27 सीटें अमरिंदर चुनाव लड़ते थे, 26 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी. टोटल 85,000 वोट अमरिंदर को मिले थे, 0.55% वोट मिले थे. अमरिंदर खुद पटियाला शहरी सीट से चुनाव हार गए थे, सिर्फ 26,000 वोट अमरिंदर को मिले थे. तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अमरिंदर को लाके कोई बहुत बेनिफिट नहीं है. फिर उन्होंने पार्टी मर्ज की, उनको लगा कि पार्टी शायद राज्यसभा भेजेगी, उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी. जब केवल सिंह कुछ जिम्मेदारी देगी, लोकसभा में उनकी वाइफ थर्ड सीट पर पटियाला में लड़ी, तो थर्ड नंबर पर उनकी वाइफ चुनाव पर चली गई. तो पार्टी को लगा कि भाई अमरिंदर के पास अब मतलब कोई बड़ा ग्राउंड बचा नहीं इसके अंदर. तो उसके बाद जब केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, तो अमरिंदर सिंह इस बात से नाराज थे कि मुझसे पूछा भी नहीं गया किसको अध्यक्ष बनाना, डायरेक्ट उनको बना दिया गया. कहा जा रहा है कि बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ जो अभी अध्यक्ष थे केवल सिंह ढिल्लो के पहले, वो भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से. हो सकता है कि वो भी वापस कांग्रेस में लौट कर, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है. तो मुझे लगता है कि अब अमरिंदर अब 84-85 के हो गए. अब उनको लग रहा है कि भाई अब बीजेपी में कुछ मिलना नहीं है. कांग्रेस में जाऊंगा तो कम से कम ये है कि लोकसभा में वाइफ चुनाव लड़के जीत जाएगी या कुछ होगा. तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि अमरिंदर का जाना चाहता है का भी तो चले जाए.
1: सचिन की रिलेशनशिप भी अमरिंदर से वही है जो राहुल गांधी की अंकल वाली.
2: अच्छा.
1: बिकॉज राजेश पायलट एंड अमरिंदर सिंह दे वर क्लोज फ्रेंड्स. तो सचिन
2: तो वो कॉन्डुइट रहेंगे अंकल को वापस घर वापसी करने के लिए,
1: बट
2: राघव चड्ढा को तो बताइए, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मेरी अपनी नस काटने के लिए तैयार है, मेरे प्यार में पागल हो रही है अखिलेश जी।
0: ये बात तो सही है कि आम आदमी पार्टी के लोग बड़ी चिंता करते हैं कि राघव चड्ढा क्या कर रहे हैं, फोन भी आते हैं, पूछते भी हैं कि राघव चड्ढा को कोई भूमिका मिल रही है पार्टी में, आते हैं पूछते हैं लोग।
2: अच्छा,
0: अब उसमें दिक्कत ये है कि क्या बताएं, अब अभी तक तो फिलहाल तो बीजेपी ने कोई स्पष्ट किया नहीं। संदीप पाठक को जरूर उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी, राघव चड्ढा को मुझे लगता है कि संभाल के रखा हुआ है, लास्ट मोमेंट पे कुछ कार्ड निकालेंगे कुछ करेंगे। देखिए राघव चड्ढा आप जानते हैं कि पंजाब के प्रभारी, संदीप पाठक ने, इन दोनों ने मिलकर बड़ी भूमिका निभाई थी हमारी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। तो ये है घर के भेदी, तो घर के भेदी लंका ढाए ये कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को इसी के लिए संभाल के रखा है बीजेपी ने, आखिरी मौके पे कुछ ना कुछ उनका इस्तेमाल जरूर करेगी।
2: ओके,
3: जस्ट ऑन राघव चड्ढा, सिंस यू सी पंजाब में ना पद्मजा, दिस बिजनेस ऑफ गर्लफ्रेंड एंड स्कॉच एंड बटर चिकन इज ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पंजाबी पॉलिटिक्स। बट ऑन अ सीरियस नोट, इफ यू रिमेंबर ऑन द ईव ऑफ लास्ट असेंबली इलेक्शन इन पंजाब, कुमार विश्वास, नोटेड पोएट, had made a very serious allegation against the Aam Aadmi Party.
1: Against the Kejriwal.
3: Against Mr. Kejriwal, that Mr. Kejriwal was allegedly on the same side as terrorists and you know, Canadians who were supporting Khalistani movement in Punjab. Now, in 2022, Raghav Chadha was the critical force, so to say, for the Aam Aadmi Party in the state of Punjab. I would be very eager at this stage now that Raghav is on the other side. Will we get to the bottom of the allegation which was made by Kumar Vishwas in 2022?
2: Yeah.
3: Will Raghav Chadha now come clean and say that yes, I mean, if any such meeting happened, then sure Raghav Chadha would have known. Let's see whether Raghav.
2: No, that's a very important point, like, because such things should not just be made fodder for elections. If such charges are made, one should get to the bottom of it and name and shame those people and in fact arrest them. Since we are on the issue of Punjab, some respite that the Aam Aadmi Party government got was from the latest activists on the block. CJP's Saurav Das was in Punjab yesterday. He didn't tell anyone. Samichi, किसी ने कोई पता था कि ऐसे ये औचक निरीक्षण करने वाले हैं वहाँ पे? वो बकायदा गए. He went to some schools of eminence and then he declared that he was quite impressed by it also and that he also met the education minister. Education minister उनसे मिलने को भी तैयार हो गए.
4: सौरव दास को पंजाब में सारे स्कूल में रामराज्य नजर आया कि सब कुछ बहुत बेहतर है, सब कुछ कोई खराब
2: नहीं, पर उन्होंने कहा कि
4: झारखंड को लेकर भी उन्होंने कहा
2: हम बीजेपी राज्यों में जाते हैं हमारी पिटाई होती है, यहाँ पे पीपल कम एंड
4: राजस्थान का सिर्फ राजस्थान में हुआ, बाकी कहीं पिटाई नहीं हुई, महाराष्ट्र में भी गए थे बीजेपी रूल है वहाँ कोई ऐसा मिसबे नहीं हुआ, सिर्फ राजस्थान का जिक्र कर रहे होंगे शायद, राजस्थान में जिस तरह से मिसबे हुआ था, लेकिन वो झारखंड का भी जिक्र कर रहे थे कि झारखंड में गए वहाँ पर अच्छे स्कूल है, पंजाब में गए वहाँ के बहुत अच्छे स्कूल है। अब सौरव दास, अभिजीत दिपके और उनके बारे का बैकग्राउंड तो बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि किससे जुड़े रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो जाएंगे नहीं बोलने की भाई स्कूल है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसके अंदर कि कम से कम 1500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे जहाँ पर अभी टॉयलेट सी नहीं बने, और कम से कम 1200 स्कूल ऐसे जहाँ पे गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं है। और अभी जो पैसा दिया था भगवंत मान ने स्कूल एजुकेशन के लिए, वो डाइवर्ट दूसरी जगह कर दिया, ये भी आरोप वहाँ पर लगा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि बाकी चीज़ों पर बात होनी चाहिए, ठीक है, अब वो भी जाएंगे और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में जब जाएंगे। I want
2: to show you some very interesting responses. You know, Saurav Das tweeted about this inspection that he did, and within 1 hour, 4:37 yesterday he tweeted about this inspection, 5:29 Arvind Kejriwal had thanked him for his inspection and assured him that we are going to act on all of your suggestions. And within another 30 minutes, the education minister, Manish Sisodia, and by the way, he had tagged only Harjot Benz. He hadn't tagged Arvind Kejriwal, he hadn't tagged Manish Sisodia, but everyone. So that's a responsive government.
1: Responsive government to hai, lekin the relationship between CJP and Aam Aadmi Party is well known.
2: Is it?
1: भाई वो तो पुराने एक्टिविस्ट हैं आम आदमी पार्टी के,
2: बट वो कहते हैं हमने तो छोड़ दिया, अब हम इंडिपेंडेंट हैं।
1: तो मायके से प्रेम तो रहता है ना ससुराल जाने के बाद भी, तो इसलिए खाली फूफा की बात नहीं होगी, मायके की बात भी होगी कि भाई जिस पार्टी से आपने अलग पार्टी बनाई, दूसरी पार्टी तो नहीं गए आप। राघव चड्ढा को का रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, वो खुद ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ तो रिश्ता ये है, उन्होंने अपना घर बसा लिया बीजेपी बना करके। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अभिजीत दीप के काम कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, आशुतोष रंका कर चुके हैं, सौरव दास कर चुके हैं, तो उनके लिए आम आदमी पार्टी तो उनकी पुरानी पार्टी है ना, तो वहाँ जा करके वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है।
0: पर इसका एक दूसरा आयाम भी है,
1: मैं नहीं कह रहा हूँ अगर कर रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी उनकी कितनी रहेगी.
0: हाँ, exactly.
1: अगर ये इंपॉर्टेंट चीज
2: नो एंड बाय द वे दिस इज नॉट जस्ट द बीजेपी व्हिच इज क्वेश्चनिंग नाउ इवन द कांग्रेस इज सेइंग कि भाई हजार ऐसी लिस्ट है आप हमारे साथ चाहिए. हाँ. आपने किसको यू डोंट इन्फॉर्म एनीवन यू डिड नॉट टेल एनीवन यू आर गोइंग टू बी इन पंजाब.
3: मनीष तिवारी नाउ लुक एट व्हाट मनीष तिवारी सेड जस्ट लास्ट वीक व्हाइल स्पीकिंग एट अ फंक्शन. ही सेड द आइडियोलॉजी ऑफ द आम आदमी पार्टी एंड द कांग्रेस इज द सेम. नाउ हियर इज अ सीनियर कांग्रेस लीडर whose name has not figured, you know, in these potential chief presidential candidates in the state of

0: पंजाब. चक्कर क्या होता है इन एनी स्टेट, यू नो, यू गो टू एनी स्टेट इन दिस कंट्री, वेदर इट्स यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यू कैन, एज आई कीप सेइंग, यू कैन लुक एट स्टैटिस्टिक्स द वे यू वांट टू. देर आर सर्टन स्कूल्स विच विल बी वर्किंग, देर आर सर्टन स्कूल्स विच विल नॉट बी वर्किंग. विनोद जी इज राइट दैट सीजेपी, इफ एनीबडी टेल्स मी दैट सीजेपी इज नॉट कंजॉइन विद द आम आदमी पार्टी, you know, then I'm not going to buy that statement. It's very clear. So whatever Mr. Kejriwal has responded to Saurav Das, if you remember that, why did the CJP delegation actually go to Punjab? Because there was an interaction which was taking place, if I remember correctly, in Maharashtra between Abhijit Deepke and some reporters, where they asked ki aap kya sirf BJP rule states mein jayenge. To unhone kaha ki nahi, hum sab states mein jayenge, hum to aam aadmi party ki state mein jayenge.
1: Baqaida tweet karke bola hai that we have gone to opposition rule states, and look how all the teachers are accompanying Saurav Das and that lady who's used to be a lawyer.
2: Yeah, kiske
1: saath kiya sab saath mein wahan pe Madhu Bangarappa jaake Karnataka mein unse mil rahe hain, jo ki education minister hain yahan pe, idhar ke education minister.
3: लेकिन
2: सोशल ऑडिट किसका होगा, जहाँ से कंप्लेंट आएगी स्कूल गड़बड़ है. अब आप मान लीजिए गए और बहुत अच्छा स्कूल है, आपने देख के सर्टिफिकेट दे दिया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, उससे नहीं बनता. जहाँ बच्चे वाकई परेशान हैं,
1: करेक्ट,
2: जहाँ आप देखेंगे बिजली नहीं है, सड़क पे वो टीचर नहीं जा रहे हैं, इमारतें नहीं ठीक है, वहाँ जाके सोशल ऑडिट
1: करिए. कर्नाटका विल बी लुकिंग एट दीज ट्वीट्स एंड दे विल नो व्हाट द रियलिटी इज. बट सिंस वी आर टॉकिंग, हमने मायके की भी बात कर ली, ससुराल की भी बात कर ली, फूफा की भी बात कर ली, तो अब बुआ की बात करना तो जरूरी है. वी हैव टू गो टू द next relation, and the very very naraz bua right now in Indian politics is Mayawati. Now Akash Anand, last time when we had spoken, 3 times he had been thrown out of his chief coordinator post. Then finally, over the delay in tweeting, in retweeting his bua's post, finally not only has he been removed from his post, his father-in-law has been made to retire. Now what is this relationship? Akash Anand was believed to be the inheritor of Mayawati's legacy. Now is it going to be his brother Akhilesh ji? Is Akash Anand out of favor, and is Ishan Anand now, and wo bhi kahin Manchester ya kahin se padh ke aaye hain shayad?
3: Nahi, abhi to lag hi raha hai ki unhi ko shayad promote kar rahi hain, kyunki jis tarah se unka naam bhi liya unhone. To lekin ek bada interesting ye hai ki mujhe kabhi kisi ne kaha hai ki aap 2-3 din rukiye, is story mein bhi kuch aur bhi badi cheeze honi hai, kuch bada dhamaka bhi hoga. To mujhe lagta hai ki some big development is going to happen,
1: like
3: I don't know what. Because I asked them,
1: क्या ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे?
3: वो अखिलेश यादव ने कहा कि या आ जाए तो आ जाए, स्वागत है.
1: उन्होंने ये नहीं कहा, रिपोर्टर ने उनसे पूछा वो आएंगे, तुम लेके आओगे तो हम ज्वाइन करा लेंगे.
2: लेकिन मायावती के ट्वीट में जो आजाद था कि मैंने उनको आजाद कर दिया, तो उस आजाद का क्या मतलब?
1: It's interesting आपने mention किया, दिखा दीजिए जरा सा वो tweet. Let's show you the tweet that Mayawati put out. It's point number 9. She writes very very long, very expressive tweets. But point number 9 said that इसलिए पार्टी के लोगों से यही बेहतर लगता है, etc. etc. He said उसी प्रकार अब उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से free in brackets
2: आजाद.
1: चंद्रशेखर आजाद समीर जी,
2: देखिए मायावती ऐसे मतलब संकेतों में बात नहीं करती. मायावती जो है बहुत स्पष्ट बोलती है, चाहे ट्वीट हो चाहे बात करे. अगर वो ये कह सकती है कि भई आपने ट्वीट करने में देरी कर दी, चीज़ों को लेकर स्पष्ट कह सकती है, तो वो ऐसे संकेतों में बात नहीं करेगी. अगर मायावती को लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ इसका कोई गठबंधन हो रहा है या उसके पास जाने की है, तो मायावती सीधे उस बात का जिक्र करती. मायावती संकेतों में एक ब्रैकेट
1: में आया, मतलब पहले एक लाइन में उन्होंने कहा कि मैं उनको मुक्त करती हूं,
2: इसलिए किया है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर के उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती. जो बड़ा नेता होता है, इंदिरा गांधी कभी किसी अपने नेता का नाम नहीं लेती थी, मोदी जी भी ज्यादा नाम नहीं लेते हैं, मायावती भी नहीं करती, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में आजाद रखा है.
3: और मुझे लगता है
1: क्योंकि उन्होंने आजाद समाज पार्टी काशीराम बनाया है,
0: वो तो है, वो तो है. बट यू नो पद्मजा, लुक एट इट दिस वे, जस्ट सी व्हाट डज इट टेल यू अबाउट दिस वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड सो ऑफन इन आवर कंट्री ओवर द लास्ट 10 इयर्स, डिनेस्टी, फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स, राइट? अखिलेश यादव इन अ लाइटर वे जस्ट अ फ्यू वीक्स बैक वाज पॉइंटिंग आउट दैट हमारी पार्टी क्यों नहीं टूटी, समाजवादी पार्टी, एंड ही सेड हमारी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हमारे परिवार के दो लोग हैं सांसद बने हुए हैं. नाउ हियर इज
1: क्योंकि सारे सांसद हमारी
0: पार्टी में, बट हियर इज मायावती,
1: हमारे परिवार से, सॉरी,
0: मायावती, अ लीडर हुज बीन of, you know, multi-term chief minister, full majority government between 2007-2012, if after all these years, Bhenji has not been able to put in place a cogent power transfer or passing the baton structure, then the responsibility completely lies with her. You speak to people in her party at the lowest level,

भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत एक

भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक

भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है। आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमी